दया पूरा जागा नाओ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाऊं अष्टपादी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निगड कर भेग सा सा सिमरो गोबिंद मन त्रिकी उतरे चिंद आस अनत त्यागो तरंग सरना की तूर मान मांग आप छोड़ बेनती करो सास अगन सागर तारो हरदन के परले हो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम गुसैज नंद सास परमानंद नरक नवार उदारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चेच तो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दो पंज पूरन कृपाल सिमर सिमना बारंबार नानक जी का आधार उतम सलोक साध के बचन मलिक लार रतन सुंद कमार तो आधार आप तरे लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुन करे प्रभु गाजय परड़े गोपाल मान के माथे नानक उधरे दिन के साथ है सरन जो सुसरणी आए कर कृपा प्रवाह मलाए मिड़ गए बैर पै सबरे न अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण हो सेवक ही सेव आज जंजाल बेकार ते रहते राम ना सुर ना कहते कार प्रसाद या प्रवतारी नान निबी खेब हमारी प्रभु की उस्त करो संत मीत सावधानी अकागर चीत सुखमणि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सो होत निदान सर्विशाता की पूर्ण होए प्रदान पुर पर सब लोहे सब ते उच पाए स्थान बोर्न होवे आवन जान हर दान खार चले जन सोए नान जे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व ते सिद्ध विद्या ताप जो प्राप्त ध्यान ज्ञान सेठ उत्तम शनान चार पदार कण प्रगास सबके मसल ते उदास सुंदर जत तद का बेता समदृष्टि दृष्टिता ए फल तिजन के मोहपन गुरु नानक नाम बचन मन सुन ए नदान जपै मन कोय सब जोग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बकाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बसराम कोट अपराध साध संग मिटै संद के

तन्मय गुरु साहिब जी। तन्मय गुरु साहिब जी। दरमाते ठाडे दरबार तुझ बिना सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल किवार। धन वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवां। घर पहला अष्टपदियां एको ओंकार, सत गुर प्रसाद सब जग जिने उपाया पाई, करण कारण समरथ जियो पिंड जिन साजिया पाई, दे कर अपनी वथ किन कहिए क्यों देखिए पाई, करता एक अकथ गुर गोविंद सलाहिए भाई, जिस ते जापे तथ।

जाकै कर सब किश है पाई, नानत परे भंडार। तिस की कीमत ना पवै पाई, ऊंचा अगम अपार। जी जंत प्रत पाल दा पाई, नित नित कर दा सार। सतगुर पूरा पेटिए पाई, शब्द मिलावनहार। सच्चे चरण सेविए पाई, भ्रम पहुवै नास। मिल संत सभा मन मांझिए पाई, हर कै नाम निवास। मिटै अंधेरा अज्ञानता पाई, कमल होवै प्रकाश। गुर बचने सुखी उपजै पाई, सब फल सतगुर पास। मेरा तेरा छोड़िए भाई, होइए सबकी धूर। कट कट ब्रह्म पसारिया पाई, पेखे सुनै हजूर। जित दिन विसरै पार ब्रह्म पाई, तित दिन मरिए चूर। करण करावन समर्थो पाई, सर्ब कला भरपूर।

वास गुरमुख कमल प्रकाशिय पाई हृदय हुए प्रकाश प्रकट पया प्रताप प्रपाई मौलिया तृतीय आकाश गुरपूरे संतोखिया पाई एन सलागा पाओ रसना राम रवै सदा पाई साचा सात सुहाओ करनी सुन सुन जीवया पाई निचल पाया थाओ जिस प्रतीत न आवे पाई सो जीड़ा जल जाऊं बहु गुण मेरे साहिब है भाई हाँ तिस कै बल जाऊं ओ निर्गुण यारे पाल दा भाई ते निथा में थाऊं रिजक संभाहे सास सास पाई कूड़ा जाका नाओ जिस गुर साचा पेटिए पाई पूरा तिस करमाओ तिस बिन

अपार। मन तन शीतल होया पाई, भोजन नामे आधार। नानक ते शरणागति पाई, जे किल्बे काटन हार। मन तन शीतल

विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुविधा मार निवारे नानक सच मिली सुहागण गुर के हित अपारे। आवो दया करे जियो प्रीत में अत प्यारे कामण बिनो करे जियो सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हमें मारे गुरमुख कार सवारे जुग जुगे को सच्चा सोई बूझे गुर बिचारे। मन मुख काम व्यापी मौसम तापी किसे आगे जाए पुकारे नानक मन मुख थाउ न पाए बिन गुरे अत प्यारे।

राम नाम व पारा अगम है पारा गुरमति तन पाइये सेवा सुरत भगत साची विचों आप गवाइये।

नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंतन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुणदाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सत बलिहारी सचे विटो आपे करे कराए गौड़ी माला तीजा गुर की सेवा कर पिरा जियो हर नाम ते आए मन्यो दूर न जाए पिरा जियो कर बैठिया हर पाए घर बैठिया हर पाए सदा चित लाए सहजे सत सुभाए गुर की सेवा करी सुखाली जिसनों आप कराए नामो बिजे नामो जमै नामो मन वसाए नानक सच नाम वडियाए पूर्ब लिखिया पाए हर का नाम मीठा पिरा जियो जा चाखे चित लाए रसना हार रस चाख मुए जियो आन रस साध गवाए सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना शब्द सुहाए नाम ते आए सदा सुख पाए नाम रह लिवलाए नामे उपजे नामे बिनसै नामे सच समाए नानक नाम गुरमति पाइये आपे ले लवाए ए वडाणी चाकरी पिरा जियो तन छोड़ परदेस सधाए दूजै किने सुख न पायो पिरा जियो बिखिया लोभ लुभाए बिखिया लोभ लुभाए परम भुलाए ओ क्यों कर सुख पाए चाकरी बडाणी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए माया बंधन टिके नाहे खिन खिन दुख संताए नानक माया का दुख तदे चूके जां गुर शब्दी चित लाए मन मुख मुगत गवार पिरा जियो शब्द मानना वसाए माया का परमयंत पिरा जियो हर मार क्यों पाए क्यों मार्ग पाए बिनस्त गुर पाए मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए नानक नाम रतन जग लाहा गुरमुख आप बुझाए राग गौड़ी संत महला पंजवा एको अंकार सत गुर प्रसाद मेरे मन बैराग पया जियो क्यों देखा प्रभ दाते मेरे मीत सका हर जियो गुरपुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री धर क्यों बड़े तुझे उडीणिया कर करें सेवा शीस चरणी मन आस दर्शन माणिया सास सासना घड़ी विसरै पाल मुहूर्त दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभदाते एक बिनो करो जियो सुनकंत प्यारे मेरा मंतन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास धन को धीरे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण पर पूरे

प्यारे हाँ माने अर्पी सब तने अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सरी अर्पी तो समीत प्यारे जो प्रभु दे संदेशा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु दिखाया किन माए सगला दुख मिटया मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलियां करे कामन मिटे सगले अंदेशा बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ ते हम जैसा मेरे मन आनंद पया जियो जी वधाई कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया समीत बंद पहर की उपजया दूत थाऊं गवाया अनहत वाजे वजे कर मैं फिर संग सेज बिछाई बिनवंत नानक सहज रहे हर मिलया कंत सुखदाई गौड़ी महला पंजवां

संत धर्मशाला, धर्मशाले अपार दयार ठाकुर, सदा कीर्तन गावे, जय साध संत एकत्र होवे तहां तुझे ते आवे। कर दया मया दयाल स्वामी, हो दीन कृपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे, मेल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचने अनूप, चाल निराली, मोहन तू मन एक जी अवर सबराली। मन ता एक अलेख ठाकुर, जिने सब कल तारिया, तद बचन गुर के वस किया, आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया वाप रहया, आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक शरण तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत, त्यावै दर्श त्याना, मोहन जम नेड़ न आवै, तुद जपै निदाना। जमकाल तिन को लगे नाही, जो एक मन त्यावै, मन बचन कर्म जे तो दिया राधै, से सबे फल पावै। माल मूत मूड जे मुग्ध होते, से देख दर्श सो ज्ञाना, बिनवंत नानक राज ने चल पूर्ण पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फड़या, सन परवारे, मोहन पुत्र मीत पाई, कुटंब सब तारे, तारिया जहान लहया अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिन्हें तुदनो तन कहया, तिन जम नेड़ न आया, बेअंत गुण तिर कथे न जाही, सतगुरु पुरख मुरारे। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसार, गौड़ी महला पंजवां श्लोक। पतित असंख पुनीत कर, पुना पुना बलिहार, नानक राम नाम जप पाव को, तिनकिल बिखदाह नहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधो, त्याए मना मुरार मुकंदे, कटिये काल दुख फादो। दुख हरण दीन शरण श्री तार, चरण कमले आराधिये, जम पंथ बिखड़ा अगन सागर, निमक सिमरत साधिये। कलम लय दहता शुद्ध करता, दिन सरैण आराधो, बिनवंत नान करो कृपा, गोपाल गोविंद माधो। सिमर मना दामोदर दुखार, पह पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वशल बिरदाया। भगत वशल पुरख पूर्ण, मनै चिंधिया पाइये, तमे अंध कूप ते उधारे, नाम मन वसाइये। सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुणयनक भगती गाया, बिनवंत नान करो कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जन तारी, करुणा में समरथ स्वामी, काट काट प्राण आधारी।

प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसै काल कंटक लोभ मोह नासै जी जाके प्राव बसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक ऐश पुन्ने जपत दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा। सुन सखिए मिल उदम करेहा मना लै हर कंते मान त्या कर भगत ठगोरी मोह साधु मंत। सखी वस आया फिर छोड़ ना जाई रीत बड़ी भगवंत। नानक जरा मरण पै नरक निवारे पुनीत करे तिस जंत। सुन सखिए पली बिनंती ए मतांत पकाइये सह सुभाय उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइये। काल कलेश मिटै ब्रह्म नासै मन चंदिया फल पाइये पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आइये। सखी इश करी नित सुख मनाई प्रमेरी आस बुझाए चरण प्यासी दर्श बैरागण पेखो थान सबाए। खोज लह हर संत जना संग समृत पुरख मिलाए नानक तिन मिलया सुरजन सुखदाता से वडपागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मन तन हर संग लिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपन डापिर मिलया।

गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, हम मूढ़ पापी जित लग तरां। गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। श्लोक।

न होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कारं आद माध्य अंत निरंकारं आपे सुने आपे सुख आसन आपे सुनते आप ही जासन आपने आपे उपायो आपे बापे आप ही मायो आपे सुख में आपे अस्तूला लखी न जाई नानक लीला। कार कृपा प्रभ दीन दयाला तेरे संतन की मन होए रवाला रहाओ सलोक। निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी। ओ अंगर मकियो अकारा एक सूत परो अनहारा पिन पिन त्रिगुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दृष्टारं

0: जित दिन विसरै पार ब्रह्म भाई, तित दिन मरिए चूर। करन करावन समर्थो भाई, सर्ब कला भरपूर। प्रेम पदार्थ नाम है भाई, माया मोह विनाश। तिस भावै ता मेल लै भाई, हृदय नाम निवास। गुरमुख कमल प्रगाशिय भाई, हृदय होवै प्रगाश। प्रगट भया प्रताप प्रभ भाई, मौलिया धरती आकाश। गौर पूरे संतोखिया भाई, एन सलागा पाओ। रसना राम रवै सदा भाई, साचा साध सुहाओ। करनी सुन सुन जीवया भाई, निचल पाया थाओ। जिस प्रतीत न आवई भाई, सो जीअड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब है भाई, हाँ तिस कै बल जाओ। ओ निर्गुण यारे पाल दा भाई, दे निथावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई, गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा भेटिए भाई, पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीविए भाई, सर्ब कला भरपूर। सास गिरास ना विसरै भाई, पेखों सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई, सर्ब रहया भरपूर। जिना प्रीत ना लगिया भाई, से नित नित मर दे चूर। अंचल लाए तराया भाई, पाओ जल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई, की तोने अंग अपार। मान तन शीतल होया भाई, भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई, जे किल बिख काटन हार। मान तन शीतल होया भाई, भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई, जे किल बिख काटन हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, वडभागिया जिथे आप जिया ने अमृत वेले नूं मुख रखदिया सतगुरां दे पावन दरबार दीआं हाजरियां भरियां ने। गुरु दर दे सत्कार ते कीर्तनी जिथे पासों नितनेम दे रूप विच लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ तों उपरंत शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कीते ने। सरबादे भले की अरदास तो उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। समा है पावन मुख वाक की कथा विचार का, सेवा निभाउणगे सत्कार योग भाई गुरशरण सिंह जी चीमा। आओ तिना पासों पावन मुख वाक की कथा विचार सरवण करिए। फुलां चुकां की खिमा, आप संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु। साहिब जीओ हम अवगुण परे एक गुण नाहीं अमृत शाड बिख बिख खाई माया मो परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत

दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसामरी, नूरी अरसा कर सौ चटिए, तुद दिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए, सजन सच्चा पातशाह, श्री शाह देशाहो, जिस पास बैठे सोहिए, सब ना दावी साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ, गौड़ी सुखमनी महला पैमा, सलोक

0: अगन माय हो मत प्राण कन का सब हे वर पोम दान नमक नमक का सिर कटावे तो पिहो में मैला जावे
1: नाम जपत गत पाए
0: मन कामना तीर दे छुटे

जोधी से सो चलन हार लपट रहे होते अंधार मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नान

भुवन भजन बिन बिरथे सब काम जो किरपन के निराथ धाम रह तवर कछ अवर कमावत माने प्रीत मुखो गंडल लावत और उपदेश आप न करे आव

साध की महिमा बने कौन प्राणी ना साध की शोभा प्रमाई समानी साध सा आवे बस पंचा साध सा अमृत रस पुंचा साग संग ना कतु तावे साग सा अस्थित मन पावे साग सा दुश्मन समीत साधु के समापनीत।

बस बस्त गोचर लहे साधु के संग अजर सहे साग संग दड़े सब धर्म साग के संग केवल पार ब्रह्म साग संग सब कुल उधारे साग संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे साग संग धर्म राय करे सेवा साग के संग शोभा सुर देवा साग संग सर्वथान गम नानक साध के संग सफल जन्म साग संग कलु खतरे साग संग नरक पर हरे जो इच्छे सोई पल पावे साध के संग ना बिरथा जावे साग संग सुनो हर नाओ साग संग हर के गुण गाओ साग संग लगे प्रमिठा साधु के संग घट कर डीठा साग संग मिटे सब रोग ना साध पेटे संजोग साग उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही परपूरा साध की शोभा ऊंचे ऊंची साध की शोभा मूल

0: ब्रह्म ज्ञानी का दसवट भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मा है।
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पीत, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश।
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधा कर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर।
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नार ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार।
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब उपरांत।
0: ब्रह्म

0: नानक होटम देखो ऐसा प्रस
1: वैसा सोज सो परसो परसन बिसन की माया दे ए भिन्न
0: कर्म कर तो वे न कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म
1: खाओ फल की इच्छा ने बाचे केवल भगत के तन संग राचे
0: तन अंतर सिमरन गोपाल सबे ऊपर होवत कृपाल
1: आप जड़े वे नाम जपावे नानको बेसो परम गत पावे
0: गोटी भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: मानते बिसे सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: सात संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पे बिसन प्रीत
0: के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: सो पंडे जो मन पर बोधे राम नाम आत्म में सोधे
0: राम नाम सारस पीवे।

0: तिस भावे सोई करावे।
1: इसके हाथ है ता सब कुछ ले, जो तिस भावे सोई करे।
0: अनजानत भिख्या मैं रचे, जे जानत आपन आप बचे।

0: सो नरक पाती होत सुआन।
1: जो जाने मैं जो बलवंत सो मत बिस्ता का यंत।
0: आपस को कर्म अंत कहावे जन्म रे बो जोन प्रमावे।
1: तान पुम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान।
0: नर कृपा जिसके हृदय

0: मैं किछ करता तबला गर्भ जोन में फिरता।
1: जब धारे को बैरी मीत तबला नेचर नाही चीत।
0: जब लग मोह मगन संग माए तबलग धर्म राय देश जाए।
1: कृपा के बंधन टूटे गुर पसा नानक को छूटे।
0: सहस खटे लख को

0: संत के दुखी अंतर ते थोड़ा संत के दुखी तो संत का दुखी उजड़ पाइये
1: संत का दुखी अंतर ते थोता ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा
0: संत के

0: सोई दिया।
1: संत के दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए।
0: संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए।
1: संत के दुखी की पूजे ना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा।
0: संत का दुखी तिष्ठे कोई।

0: जो कुछ करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग।
1: सुभाए होवे सो होए, करणे हर पछाणे सोए।
0: प्रभु का क्या जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दिसताना।
1: इसते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निदान उन्हों बने।

0: पाइए सत्संग हर कीर्तन गाइए
1: बिनते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे
0: उड गई संत दयाया सब सुख नानक ते पाया
1: नित को जीवल नहार भूखे को देवते आधार
0: सर्व राजा की दृष्टि माए बुले का लहना पाए
1: सब तिसकाओ कर

0: नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सुन वेद प्रधान नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के समुद्रे सुन सुन
0: कर कृपा जस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए
1: रूप सज्जा का सद स्थान पुरुषाद केवल प्रधान
0: तू सत्सद जाकी बाणी सत पुरख सब माए सुमाणी
1: सत कर्म जाके चना सत मूल सत सत दुपत
0: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई
0: सत वचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत निर्बुजे जे कोई नाम जवता की गत होए
0: आप सत क्या सब सत आपे जाने अपनी मित गत
1: जिसकी सिस्तो करने हार अवर ना बूझ करत विचार
0: ते की मित ना जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया
1: बिस्मन बिस्म पहि समाद जन बोझा तसे आया स्वाद
0: के रंग राज जन रहे गुर के बचन पदार्थ ले
1: ओए दाते दो काटन हार जाके संग तरे संसार
0: का सेवक सोवड़

0: सेवको नाम जपाई,
1: अपने सेवकी आपत रखे ताकि गत में कोई न लखे,
0: प्रभु के सेवको को न पहुँचे, प्रभु के सेवक उचते उचे,
1: जो पर अपनी सेवा लाया ना सो सेवक दिस पर घटाया,
0: किरी में कल रखे पसम करे लश्कर।

सदगुरु सिखी करे प्रतपाल, सेवा को गो सदा दयाल। सदगुरु सिखे बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हाटे। सतगुर सिख का तपलत सवार, ना सतगुर सिख जिये नाल सुमार। आपस को कर कछ न जिन्ना वे, हर हर नादे सत त्यावे।

पूरा गुरु आखे हो जाका मंत्र अमर दिस पे के होए संत जी भाई कुछ तत्व।

0: निसार अष्टपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार कर्ण कान सोप्रभ सम्राथ जड़ कर गया वो नाम हर वाथ एक आस रखो मन माए सर्व रोग नानक मिट जाए जिसो को निज बाछे मीत सो साधु संग प्रीत अन को पावे रोग न जाए रोग मिटे हरे अवखद लाए मन प्रबोधो हर के नाए दर्द तावते आवे धाए
1: ताको बिगन न लागे कोई देव से सोए
0: कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: गोविंद से पूर्ण।

प्रभु सेव आप त्याग सरन गुरुदेव अनि गोपावना छुटन हारे सिम शास्त्र वेद बिचारे संग न चाल तेरे तना तू कब लपटावे मूर्ख मना।

0: पाने सो क्यों बिसरे जी किया जाने,
1: क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया, सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया,
0: सो कब जगन में रखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे,
1: सो क्यों बिसरे जे बिख तिकट जन्म जन्म का टूटा गंड है,
0: गुरपुरे तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जनते आया,
1: साजन संत करो यो काम आत्या जप हर नाम,
0: सिमर सिमर सिमर सुपावो आप जपो अवरा नाम जपावो,
1: भक्त पाए तरी संसार बिन भक्ति तन हो सीशार,
0: सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम।

0: जब इसका वरन चिहन न जापत तब हर्ख सो कहो कहा किसे व्यापत।
1: जब अपने आपार ब्रह्म तब वो कग धोवत परम।
0: आपन खेल आप वर तीजा नानक करने हार न दूजा।
1: जब उत्पाद केवल तने तब बंद मुक्त को किसको गनी।
0: जब एक है हर अगम पार तब नरक सुर को

0: जन्म मरण कहो कहां विनाशन।
1: जब पूर्ण करता प्रल सोए तब जम की त्रास कहो किस होए।
0: जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा।
1: जब नानंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे।
0: आपन आप ही चर जा नानक आपन रूप आप ही।

0: जगदीश तै सदन को कीस।
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तै किसे भुख गवंदरी पतावे।
0: तन करावन करने हार नानक ते का नाही सुवार।
1: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई।
0: जय सर्व कला पे प्रवीण तै भेद देव कहां को चीना।
1: जब अपन आप आप उर

0: आत्मन होवत सुख।
1: चिंता जाए मिटे अंकार, ते जन को कोई न पहुंच रहार। मत पूरी अमर जा के दृष्ट, दर्शन भेद सरसिष्ट।
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान।
0: इस

0: इसका विश्राम
1: सुन समान कह न जाए
0: आज से आप दिखाए नानक ते जन सो जी पाए
1: अंत शोभा अंत घट
0: व्यापरिया माया आकाश पयाल सर्व लोग पूरन प्रतपाल।

0: भगवत रंग संजना की तूर मन मंग।
1: आप छोट बेंती करो सागर सागर करो।
0: हारतन के पालो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार।
1: कुचल सहजानंद सत्संग पद परमानंद।
0: नरक निवारु धारो जियो गुण गोविंद अमृत पियो।
1: चित्त धोन रहने एक रूप जाके रंग अनेक।
0: गोपाल मोदय दीन दयाल दो भजन पूर्ण कृपाल।
1: सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का ये आधार।
0: उत्तम श्लोक साध के बच

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवें। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरें घर नौ निधि आवे ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब, सब थाई हुए सहाय।

संग सदा प्रवासी पाप का नाम मन तन आधारू सिमरत नाम होवत तनसार प्रावजित आए पूरन सब काज हर बिसरत सब का मोहताज चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रेत मानतनंतर हर हर मंत नानक भगतन कै कर सदानंद राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा जानड़िए कै कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

कराऊं। सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सो जन होत न्याला। गुर की सेवा सुकरे प्यारे जिसनु हुई दयाला। सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला परपूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोई तिन कही जिने अपना प्रभ जाता। हर नाम आराधे नाम वखाणे हर नामे ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखण पावा। वड़भागी से काढ़ी है प्यारे साध संग जिन वासो। अमृत नाम राधी है निर्मल मन होवै परगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूकै जम की काने। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने भाणे। ऊचा पार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावत उतरे सुनते उतरे बिनसै पाप कनेरे। पशु प्रेत मुगत को तारे पाहन पारो तारे। नानक दास तेरी

पंजवा सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिरद सुमारिया साजना होए कृपाला बिकसै सब परवारिया कारज सतगुरु आप सुवारिया वडे आर जा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया राउ वन तृण त्रिपुण हरिया होए सगले जी सदारिया मन शै नानक पल पाई पूरन इच्छ पुजारिया बिलावल महला पंजवा जिस ऊपर होवत दयालु हार सिमरत काटै सुकाल राहु साध संग पजिय गोपालु गुण गावत टूटै जम जालु आपे सतगुरु आपे प्रित पालु नानक जाचै साध रुवालु बिलावल महला पंजवा मन में संचो हर हर नाम आन दिन कीर्तन हर गुण गाम ऐसी

राहु जो जो निंद करे इन ग्रहण के तिसे आगे ही मारे करतार। नानक दास ताके शरणाई जाको शब्द अखंड पार। बिलावल महला पंजवा। ताप संताप सगले गए बिन से ते रोग। पाल ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग राव। सर्व

तै सा संसार, दृष्टमान सबन सिय क्या लागे गवार। का सो भाई मीत है देखो नैन पसार, एक चाले एक चला चाल सै सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुरु सिव्या से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राखू पै जुमरार। मिलावल मोहला पंजवा, लोगन किया वड़ियाया बेसंतर।

मुख बोला सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बिलावल मल्ला पंजवा राखो अपने चरण प्रभ मोहि कृपा तारी सेवा कछु ना जान्यो नीच मूर्ख गारे मन क्रोध तुद उपरे मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे राव हमें अवगुण करै संख ने नित उम निर्गुण दा तारे दासी संगत प्रभु त्याग के कर्म हमारे तुम देहो सब किश दया धार हम अकृत कनारे लग परे तेरे दान सो न चित खस मारे तुझते बार कुछ नहीं

टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल, मस्तक अपना पेट दियो गुन सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलो दयाल, निसबासुर मन अंध होत चितवत कृपाल रहाओ। जगत उदारन साध प्रभ तिन लागो पाल, मोको दीजै दान प्रभ संतन पगराल। उक्त स्यानप कछ नहीं नाही कछ काल, प्रम पै राखो मोहते काटो जम जाल। बिनो करो

कीता लोड़े सो करे तुझ बिन कछ नाहे प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाहे तुमरी कृपा ते छूटिए बिनसे अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ खोजत खोजत खोजिया नामै बिन कूर जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर जित जित लावो तित तित लगे स्यानप सब जाली जत कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली सब किछ तुम ते मांगना वडभागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बिलावल महला पंजवा साध संगत कै बास बै कलमल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना मंतन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ हरस चाकत त्रापया मनरस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना शीतल सा संतोख होए सब बुझी तृष्णा दह दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राख्या पय प्रम पसना नाम निदान नानक सुखी पेख साध दर्शना बिलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलख सिकदारिया अग्नि मह जाल संत जनाका छोहरा तिस चरणी लाग माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सुसर्ब निदान गृह साक्त छत्ती प्रकार ते बिखु समान भगत जनाका लुगरा ओड नगर न होई साकत सिरपाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यों मुख जोरिए अद बिचो टूटे हरजन की सेवा जो करे इत उते छूटे सब किछ तुम ही ते हुआ आप बणत बनाई दर्शन भेट साध का नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रवनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ एह निद सिद्ध पावो संत जना की रेणुका लै माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अतनीच होए कर बिनो बुलावो पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो सास सास नह विसरे अनकथे नातावो सफल दर्शन गुर पेटिये मान मोह मिटावो सत संतोख दया तरम सिगार बनावो सफल सुहागण नानका अपने प्रभ पावो बिलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया जिस जन हुआ साध संग तिस पेटे हर राया एहो प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनिक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ शरण प्रे की राखता नाही सह साया करम पूम हर नाम बोए अवसर दुलबाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतित पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया मत पूलो मानुख जन माया पर माया नानक तिस पत राक्षी जो प्रभ पहराया बिलावल महला पंजवा
ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੇ ਅਨੇਕ ਛਿਦਰ ਮਨ ਮਹਿ ਟਕੇ ਨਿਰਮਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇ ਹੇ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮੰਨੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਉਂ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇਹ ਰਹਾਉ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰੇ ਹੇ ਛੋੜ ਪ੍ਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉਂ ਰਛੋ ਤਜ ਕੂੜੇ ਨੇਹੇ ਜਿਨ ਅਨੇਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀ ਇਹ ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਤੇ ਮਤ ਲੇਹੇ।

बिलावल महला पंजवा। चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याये किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाहिये पय दुश्मन पागे। बिलावल महला पंजवा। मन तन प्रभ आराध्ये मिल साध समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम पागे। राम नाम जो जन जपै अंदिन सद जागै, तंत मंत नह जोई तित चाख न लागै रहाओ। काम क्रोध मदमान मोह बिनसे अनरागै, आनंद मगन रस राम रंग नानक सर नागै। बिलावल महला पंजवा। जी जुकत वस प्रभु कै, जो कहे सो करना पए, प्रसन्न गोपाल राय पव किछ नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे, जम कंकर नेड़ ना आवई गुरसिख प्यारे रहाओ। करण कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर, नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर प्रभ आपना नाठा दुख ठाओ, विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ नाताओ। बलिहारी गुर आपने चरणन बल जाओ, अनद सुख मंगल बने पेखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद तुन एहो बनेओ सुआओ, नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बांछत फल पाओ। बिलावल महला पंजवा। दास तेरे की बेनती रिद कर प्रगास, तुमरी कृपा ते पा ब्रह्म दोखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास, कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कट सास रहाओ। मात पिता बंदप तू है तू सर्ब निवास, नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बिलावल महला पंजवा। सर्ब सिद्ध हर गाइये सब पला मनावे, साध साध मुखते कहे सुन दास मिलावहे। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन, जिय सगल दयाल पए हर हर नाम चीन रहाओ। पूर रहयो सर्बत्र मह प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बिलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभ होए किरपाल, राख लिया अपना सेव को मुख निंदक छार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास, पा ब्रह्म तू राख्या दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर, नानक की बिनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत मह सफल जागी सेव। ऊच अपार अगनत हर सब जिय जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा आराध्या होए किरपाल, मार्ग संत बताया टूटे जमजाल।
ਦੁਖ ਭੁਖ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟਿਆ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਪਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ ਪਉ ਨਾਠਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਸਰਾਮ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ ਫਿਰਤੇ ਪਹਿ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਟ ਕਟ ਸਭ ਜਾਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸਾਂਤ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਣਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ। ਬਿਰਥੀ

0: पंजवा मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता पा ब्रह्म जन सेविया अंदिन रंग राता शांत सहज आनंद कना पूरन पई आस सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम अंतर जामी थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा
1: दुख लगा ना पाई सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई राम नाम औखद दिया एका लेव लाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब व्याध मिटाई कहो नानक किरपा पई प्रा पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बालक आप रखियो ना पार ब्रह्म गुरदेव सुख साध सहज आनंद पै पूरन पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रावे आप रोग मिटाए जवालियो ना जा कावड़ परताप। दोख हमारे बख्शियन अपनी कल धारी मन बांशद फल दित्ते आउणा नानक बलहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौ पदे दो पदे घर छीवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद।

बिलावले महला पंजवा संतन का सुनियत प्रभु की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल धुन पूर रही दिन से हर रात रहाओ।

सब हर जन राग रतन रसनाया लाभ। कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गह शरण सुख दाते गुर कह वचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै विनस कहो नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा ताप लाहिया गुर सिरजनहार। सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारा संसार हाऊ।

सद्गुरु सबदो यारो दीपा बिनसो अंधकार तै मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा रहाओ। बिस्मन बिस्म पै जौ पेख्यो कै न जाय वड़ियाई, मगन पै ऊहां संग माते ओत पोत लपटाई।

निर्मल निर्मल सुचो सुचा सुचो सुचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा बिलावल महला पंजवा बिन हर कामन आवत हे जासु राज माय तुम लागे ओ मोनी मोहावत हे रहाओ कणक कामनी सेज सोनी छोड़ खिने मह जावत हे उर्ज रहो इंद्री रास प्रेरियो बिखेठ गौरी खावत हे तृणको मंदर साय सवार्यो पावग तलह जरावत हे ऐसे गढ़ में हैठ अठिलो फूल फूल क्या पावत हे पांच दूत मूड पर ठाढ़ है केस गहे फेरावत हे दृष्ट नयाव

सहज समायो गुरा बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिया मुख लागो जो वड़ भागो सुहाग हमारो कतहु न डोली रूप न धूप न गंध न दीपा आद भूत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन आदनी की मेरी बणी खटोली।

गई खई। शासन तोह दया धर्म सोच संतन तेव मंतलई, कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा क्या हम जी, जंत बेचार बारो नसा कै एक रवाई। ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई। क्या कथिया किश कथन न जाई, जै जै देखा तै रया समाई रहाओ। जै महाभयान दुख जाम सुनिए, तै मेरे प्रभ तुह सहाई। शरण परयो हर चरण गहे प्रभ, गुर नानक कौ बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा अगम रूप अविनाशी, करता पतद पावन एक निमख जपाई है। अगम रूप अविनाशी, करता पतद पवित एक निमख जपाई है। आचार्य सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चारण चरण मान लाइया। केत विधि है केत संजम पाइया, कौ सुरजन केत जुगती त्याय रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा, ओह तिसकी लई लई हुन जाइया। नानक शरण शरण सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाइया। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी। तंद बंद यार सगल जंजारो, अवर काय ते छूट परी रहाओ। सुख सहज यार करो आनंदा, सुख सहज यार कणो आनंदा। गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस भरन साका। गुर पूरा मेरे उल्ट तरी।

निशान। जो तुम करो सोई भल मानो, मन ते छूटा सगल गुमान। कहो नानक ताकी शरण आई, जाका किया सगल जहान।

अंतरयामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे कर अपने बड़ समरथ निमाणिया को मान भरम पै बिनस गए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चा नाने सा सा सियाराधे नानक सदा सदा जाइए कुरबान बिलावल महला पंजवा दोवै थाव रखी गोर सूरे हालत पहलत पार ब्रह्म सुवारे कारज होए सगले पूरे रहाओ हर हर नाम जपत सुख सहजे मज्जन होवत साधु तूरे

मन तृप्ते हर सिमरह श्रम सगले लाथ निध निदान नानक हरव सेवा अवर सियाणप सगल अकाथ बिलावल महला पंजवा अपने सेवा को कब हुना बिसारो और लागो स्वामी प्राव मेरे पूरा प्रीत गोविंद विचारो रहाओ पादद पावन प्राव ब्यर्द तुमारो हमरे दुख हृदय मद तारो जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हो मैं पटल कृपा कर जा रो

करंद कंवल जवान रस नहीं चाह। एके हर लाहे आन ते टूटिए रिख ते छूटिया, मन में हर रस घूटिया, संग साध उल्टिया, आन नाही नाही रे, नानक प्रीत चरण चरण हे। और आग बिलाल महला नौवा दो पदे को अंकार, सतगुर प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो, अजा मल गणका जे समृत मुक्त भय, जी जानो रहाओ गाजगी त्रास मिटी छिन्हु मैं, जावि राम बखानो। नारद कहत सुनत ध्रुव बारक, भजन माहे लपटानो, अचल अमर निरपय पद पायो, जगत जाहे हैरानो। नानक कहत भद रक्षक हर, निकट ताहे तुम मानो, बिलावल महला नौवा, हर की नाम बिना दुख पावे।

झूठे कुशल कुशोता वेद पुकार है भगत स्रोत है सुन सुन मन वेख जोत शास्त्र सिमरत नाम दृढ़ाम गुरमुख साध उत्तम क्राम मन मोह जोनी दुख सहामंग बंधन टूटा एक नाम वसामंग मने नाम सची पद पूजा।

एक गिरह दह द्वार है जा कह अनस तस्कर पंचोर लगैया धर्म अर्थ सवे हिरले जावे मन मुख अंधले खबर न पैया कंचन कोट बहु मानक भरिया जग ज्ञान तत लेव लैया तस्कर हेरू आए लुकान गुर कै शब्द गुर कै शब्द पकड़ बंद लैया हर हर नाम पोत बोहता खेवड़ शब्द गुर पार लंघैया जम जागाती नेड़ न आवै ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण

दिन हरे वर्जे चाहना बिष्टा क्रम पसमा राम लाए बिरहो भगवंत संगे हो मिल बैरा गुण राम चंदन चीर सुगंध रसा हम बिख त्या गुण राम ई तूत नह डोली हर सेवा जा गुण राम नानक जिन प्रभाया अपना सा अटल सुहागण राम बिलावल महला पंजवा हर खोजो वड भागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद सद गाई है पार ब्रह्म कै रंगे राम सो प्रभ सदी सेवी है पाई है फल मंगे राम नानक प्रभ सर नागती जप्यण ततरंगे राम एक तिल प्रभु ना विस्तरै जिन सब कह दीना राम मड़ भागी मेला बड़ा गुरमुख पिर चीना राम बाह पकड़ तम ते काढ़िया कर अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवा शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण पय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच बजामी राम नानक उदरे जप हरे सब हुका स्वामी राम रस भिन्न अड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ पेख दे छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखे रस फीके राम।